0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Music G, Soch G, aur Aapki, Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: उस बंदे का या निकल जाता है तो उसका फ़ायदा होता है, नुकसान किसका होता है। तो समझ नाजरीन, इन लोगों पर आपको भी नज़र रखनी चाहिए कि ये जो क्रिमिनेलिटी है, फिर उन्हीं को बेचारों को तकलीफ़ होती है, फिर वो मुसीबत में मारे जाते हैं, लंबी लंबी सज़ाएँ हो जाती हैं, फिर कानून को गालियाँ दी जाती हैं, सियासतदानों को गालियाँ दी जाती हैं, और हम फिर अपना भी अपना जो है तबसरा करना शुरू कर देते हैं। तो हमें समझ नाजरीन, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की हमें सियासत करनी चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। जहाँ भी कानून का एहतराम किया जाता है आपको सहूलियात मिलती हैं, जहाँ भी अच्छे काम होते हैं आपको सहूलियात मिलती हैं। अगर कोई कानून को तोड़ेगा, दुनिया के किसी हिस्से में भी तोड़ेगा, तो कानून हरकत में आता है। जो मर्जी आप कर लें, कानून से कोई नहीं लड़ सकता, स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

और जिस चीज से अल्लाह ने करने के लिए कहा उसको करना और जिसको मना करने को उसे बचना चाहिए। ये एक तकवा होता है कि हलाल हराम फर्क कर गाल कर। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं कि अल्लाह ताला की नियामतें हैं जो जिससे अल्लाह ताला की बढ़ाई अल्लाह ताला की आजमत का पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला इस इंसान को पैदा किया, कितना खूबसूरत पैदा किया, फिर इस इंसान के लिए अल्लाह ताला कैसा कैसा लिबास बनाया है। तो ये सारी अल्लाह ताला की जो है नियामतें हैं, अल्लाह की निशानियां हैं जिससे बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसी कैसी नियामतें दी हैं, लिबास के लिए कैसे कैसे जो है वो चीजें पैदा की हैं कि जिससे इंसान आसानी से जो है वो लिबास बना सकता है। तो बहरहाल जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि इस लिबास को अल्लाह की निशानी को देख करके लोग जो है नसीहत हासिल करें, लोग इसकी वजह से अल्लाह की नियामत का शुक्र अदा करें, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। तो इस मौके और मनासिबत के लिहाज से कि आज का जो मौसम है इस लिहाज से हमारे मर्दों और औरतों को इस गर्मी सर्दी के मौसम में जहाँ गर्मी है लिबास का खास ख्याल रखना चाहिए। ख्वातीन ऐसा लिबास ना पहने कि गर्मी का बहाना बना करके इतना लिबास हो वो शफाफ लिबास हो कि जिस्म के अंदर आजा नजर आते हों, या पूरा लिबास जो है वो ना हो, बाजू नंगे हों, ये सारी वो चीजें हैं जो है इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं। और इससे लिबास पहन करके आदमी जो गुनाह का इर्तिकाब करता है अल्लाह की नाराजगी मोल लेता है। मर्द हैं कि मर्द आजकल जो है वो लिबास के बारे में छोटे जो है वो पहन लेते हैं, जो है ट्राउजर छोटे पहन लेते हैं, तो अगर आप घुटनों से ऊपर आपका ये जो आप पहनते हैं तो ये नजायज है, इससे आपकी नमाज भी नहीं होगी। तो घुटने जो है उसको ढके हुए होने चाहिए, लेकिन ये लिबास जो है ये एक जरूरी लिबास है, ये लेकिन जो है होना ये चाहिए कि आप अच्छा लिबास पहने, अच्छा एक मुख्तरम लिबास आप पहने कि लिबास जो है उस लिबास से आपको खूबसूरत लगे और अपने की खूबसूरती में इजाफा होना चाहिए। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपका लिबास ऐसा हो कि जिस लिबास में जो है वो देख करके आपकी खुद जो है वो लोगों को जो है अच्छा ना लगे कि कैसा लिबास उल्टा सीधा पहना हुआ है। तो इस लिबास का खास ख्याल रखना है, तो जो इस्लामी तालीमात है उसके मुताबिक आपने लिबास पहनना चाहिए। अगली आयत में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं या बनी आदम अल्लाह इफ्तिनक मुशिता, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदम की औलाद शैतान तुम्हें गुमराह ना कर दे। जैसे कैसे गुमराह ना कर दे, जैसे शैतान ने तुम्हारे जो है माँ और बाप को जन्नत से निकाल दिया था, जन्नत से निकाल दिया था। कैसे जन्नत से निकाला, कैसे किया, ये अनजुआन हमारी बास हो माँ के, शैतान ने जन्नत से निकालने के लिए ये किया कि उन दोनों का लिबास उतार दिया, लिबास उतार दिया ये क्यों, ले यूरिया हुमा सवाते हिमा, ताकि उनको दिखाए वो उनकी शर्मगाहें, जो शर्मगाहें जो पोशीदा थी और जिसकी वजह से उन्होंने इज्जत एहतराम का लिबास पहना हुआ था। तो शैतान ने क्या कि जन्नत से निकालने के लिए क्या किया कि वो उनका लिबास उतार दिया ये। तो जन्नत चूंकि ऐसी जगह है जहां पर इज्जत एहतराम का लिबास पहनना है, वहां जो है शर्म हया की जगह है जन्नत जो है, तो शैतान ने ये चाल करके उनको ये कर दिया जिसकी वजह से अब उनको जन्नत से निकाल दिया। तो आप यहाँ से यही पता चलता है कि जो शैतान है, शैतान ने हमारे माँ बाप पर हम जो सबसे पहले हमला किया लिबास उनका उतार दिया। तो गया शैतान का सबसे पहले हमला ईमान वालों पर यही होता है, ईमान के बाद कि उसको नंगा कर दे, उसको जो है ऐसा लिबास उसको पहन दे जिसकी वजह से उसके जिस्म के पोशीदा आजा नजर आने लग जाए। तो शैतान ये करता है। और अब यहाँ इसी बात समझ दें कि शैतान का सबसे बड़ा हमला इस वक्त इंसान पर यही है लिबास के बारे में। लिबास मुसलमान हूँ गैर मुसलमान सबके लिए लिबास की बेहतियाती की जाती है, उस बेहतियाती की वजह से फिर कितने दुनिया में जरायम होते हैं और इस जरायम इसी वजह से होते हैं कि लिबास में एहतियात नहीं किया जाता है। इस दुनिया में जो है चाहे को किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी दीन से ताल्लुक रखता हो, लेकिन जो है जब वो लिबास में बेहतियाती करते हैं, ख्वातीन सही लिबास नहीं पढ़ते, तो फिर कैसे कैसे जरायम होते हैं, खुद ख्वातीन पर कैसे कैसे जुल्म होते हैं। वो सिर्फ बुनियाद क्या होता है, कोई ये लिबास, जो इसलिए इस्लाम ने यही पहले कहा कि आप लिबास का ख्याल रखना,
اپنے جو ہے جو شرعی لباس ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں

0: खूब लिबास है, उस लिबास का ख्याल रखना। तो ये लिबास के अंदर जो है इसमें कमी करना, लिबास से बेलिबास करना, ये शैतान का सबसे पहले हमला होता है। इसलिए फरमाया कि शैतान जो है इन हो या रकम हुआ कबील हो, फरमाया कि शैतान जो है वो देखता है आपको, और शैतान अपने पूरे कबीले अपने लो लश्कर आप साथ शैतान आपको देखता है, मैं हैश तरव ना हूँ, ऐसी जगह से जहाँ आप शैतान को नहीं देख सकते हो। तो यानी आप बाजहवा लिबास उतारेंगे, ये करेंगे, आप समझेंगे कि यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है, इसलिए फरमाया कि नहीं, शैतान उस वक्त देख रहा होता है, आप शैतान आपको देख रहा होता है, इसलिए शैतान और उसका जो लो लश्कर है, शैतानी लश्कर है कि वो आपको देखता है, आप उसको नहीं देख सकते, इसलिए हर हाल में जो है आप शैतानी चालों से बचने की कोशिश करें। और इसे फरमाया इन्ना जालना शयातीन औलिया लिल्लज़ीन ला युमिनूना, और फरमाया कि हमने शैतानों को बना दिया दोस्त उन लोगों का जो ईमान नहीं लाते। अब उन लोगों का ईमान नहीं है, शैतान का दोस्त हो जाता है, जब शैतान दोस्त हो जाता है फिर शैतान अपनी मर्जी से जो चाहता है इस इंसान पर अपनी चालों से जो है पर इसकी दुश्मनी का इजहार करता है और इंसान को गुमराह करता है। और कितने आजकल के हालात में ऐसे हो रहा है कि कैसे कैसे इस लिबास की वजह से जराइम हो रहे हैं, ख्वातीन पर जराइम होते हैं, जुल्म होते हैं, इसी वैसे शैतानी चाल है। और अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि शैतान उन्हीं लोगों का दूसरे ईमान नहीं लाते। तो दूसरी जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अल्लज़ीन आमनु अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान का उन लोगों पर कोई चाल नहीं चलती है, शैतान की कोई चाल उन लोगों पर नहीं चलती है जो लोग क्या करते हैं, जो ईमान वाले हैं, वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो हर हाल में अपने रब पर भरोसा करते हैं। शैतान का उन लोगों पर कोई चाल नहीं चलती है जो ईमान वाले हैं और जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। लेकिन इनमा सुल्तान तवल्लौनहु, तो शैतान की चाल उन लोगों पर चलती है, यह तवल्लौनहु के जो शैतान से दोस्ती लगाते हैं, तो शैतान दोस्ती कराते हैं, और जो मुशरिक जो लोग शिर्क करते हैं ऐसे लोग जब शैतान की चालू में आ जाते हैं और फिर शैतान इन लोगों को गुमराह करता है और सारे फसाद फैलाता है। बरहा मुसलमान अपने लिबास पहनने में इसमें हमेशा मुसलमान मर्द और औरत को इसका खास ख्याल रखना चाहिए कि हमारा कोई लिबास इस किस्म का ना हो जिसकी वजह से शर्म हया का जो है खत्म होती हो और जिसकी वजह से जो है शैतान को मौका मिलता हो इंसान को साथ जो है खिलवाड़ा करने में। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है कुरान की तालीमात की किताब का लिबास पहनने की तौफीक अता फरमाए, इस दुनिया के अंदर इज्जत का एहतराम का लिबास पहनने की तौफीक दे, और आखिरत में अल्लाह ताला हमें इज्जत एहतराम का लिबास पहनाए जिसकी वजह से हम दूसरों के सामने मुअज्जज नजर आए, दूसरों इज्जत वाले नजर आए, और अल्लाह ताला हमें हलाल का लिबास पहनने की तौफीक अता फरमाए और हराम के लिबास से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान जहां जहां परेशान है सबकी परेशानी दूर करे, और खासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान और इस पर खास करके पाकिस्तान के शहर कश्मीर जो है उसमें बहुत कुछ जो हो रहा है जो मीडिया पर आता है नहीं आता है, लेकिन वहाँ हालात बहुत खराब है, जिसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी उस पाकिस्तान के शहर को अल्लाह उसको मजबूत करे, अल्लाह ताला उसका हर फितने से हर जो है जो दुश्मनों के चालों से अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाए, और कश्मीर और पाकिस्तान ये सारे मुसलमान भाई भाई हैं, अल्लाह ने मोहब्बत और ईमान के रिश्ते को मजबूत करे, और सारे मुसलमान जहाँ की परेशान है अल्लाह सब की परेशान को दूर करे, बीमारों को अल्लाह ताला शिफा कामला आजरा अता फरमाए, और मरहूमिन के अल्लाह ताला माफ़रत फरमाए। वाखर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नाप ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम پیش خدمت ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب موجود ہیں, جو آپ کو موسم کا حال, ڈنمارک کی خبریں, لوکل خبریں اور دائیں بائیں کے حالات پر بھی روشنی ڈالیں گے, پھر ان سے بات چیت بھی کریں گے. سامع ناظرین, آپ کو پتا ہے کہ یہ گرمیوں کا موسم ہے, تو گرمیوں کے موسم میں ہم صرف موسم کو انجوائے کرتے ہیں لیکن باقی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. قانون قاعدے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. یہ محرم کا دن ہے, محرم کا مہینہ ہے, ہمیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو شاہ صاحب, آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ فور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے لسنر اور ناظرین جتنے بھی ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ نے بہت اچھا انٹرو میں کہا ہے کہ محرم کا احترام کرنا چاہیے. پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے محرم کیا ہے. اس میں ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے موسم کے بارے میں جیسے آپ نے پوچھا, جیسے ہم شروع کرتے ہیں, خدا کا شکر ہے کہ جیسے پچھلے ہفتے گرمی پڑی اس طرح کی گرمی اب نہیں ہے, بلکہ مریض جیسا موسم ہو گیا, ہمارا موسم واپس آ گیا. پورے یورپ میں اتنی گرمی پڑی ہے کہ اسپین میں ایک دن میں 325 سے زائد انسانوں نے جان گوائی, اور اسی طرح فرانس, جرمنی اور دوسرے ممالک میں بھی بے شمار بچے اور بوڑھوں کی جانیں جو ہے وہ ضائع گئی. تو لہٰذا اللہ نے کچھ ہمارے اوپر تھوڑی سی رحمت کی اور یہاں پہ موسم جو ہے وہ اتنا گرم نہیں ہوا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں زیادہ تقریباً 90% گھروں میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے, اور ایئر کنڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے گرمائش بہت زیادہ گھروں میں اور فلائٹس میں ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت تھی, اور وہ ہمارے ملک میں بھی اتنا زیادہ پانی پینے کا نہیں تھا. تو خطرہ بڑھ رہا تھا کہ اگر گرمی زیادہ ہوگی تو پانی کی زیادہ ضرورت ہوگی, اور وہ ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو سکے. لیکن اللہ کی رحمت ہے, اس موسم میں بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں. ابھی بھی باہر کبھی بادل آ جاتے ہیں, کبھی دھوپ آ جاتی ہے, موسم پھر بھی پلیزنٹ ہے, اچھا موسم ہے. آپ باہر نکلے, گھومے پھرے, بچوں کو لے کے باہر جائیں, اور خصوصی طور پہ آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ فیون میں جاتے ہیں, اڈنسے میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ اس جنگلات کے آپ ذرا تھوڑی سی خیال رکھیں کہ وہاں پہ جیسے ہم وہ پاکستان میں کہتے تھے نا بمبو کتا پنجابی میں, اور سنڈی ہے ایسی جس سے زیادہ تر یہ جو ہے اپنا تتلیاں بنتی ہیں, وہ بعد میں اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتی ہے. لیکن وہ بمبو کتا جس کو ہم پنجابی میں کہتے تھے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا تھا کہ جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے تو وہاں پہ وہ سرخ دانے نکل آتے تھے, اور برننگ اتنی زیادہ ہوتی تھی, خارش, اور اس کے ساتھ آدمیوں کو وامٹنگ اور بیماری لگ جاتی تھی. یہ کسی طریقے سے اڈنسے کے جنگلات میں آ گئے ہیں اور وہاں کے باغات میں آ گئے ہیں, لیکن حکومت اس سے بہت زیادہ پریشان ہے, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ پورے ڈرما کے اندر نہ پھیل جائے. تو لہٰذا آپ اگر اس طرح کی چیزیں دیکھیں کسی درخت پہ تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ فوراً سے پہلے پولیس کو یا لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ انفارم کریں. تو یہ تھا موسم کا حال. موسم اچھا ہے, لوگوں کو ابھی تھوڑی بہت کھانسی ہے, اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم ٹھنڈی گاڑی سے, ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے ایک دم باہر نکلتے ہیں, اور گرم ہوا جو ہے وہ ہمارے لنگس کو, پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے. تو اس کی احتیاط کرنی ہمارا فرض ہے. دوسرا, آپ نے مینشن کیا محرم کا مہینہ, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت محرم کا مہینہ جو ہے یہ صرف ماہ محرم نہیں, یہ غم رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ کے خاندان کو جو لوگوں نے شہید کیا اور اس کا واقعہ جو کربلا میں پیش ہوا, اس کی ہم آپ کو یہ یاد ہوگا کہ آپ نے ریڈیو اور دوسرے میڈیا پہ بھی سنا ہوگا کہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بہت غم زدہ ہوں کربلا کے واقعہ میں, اور پھر وہ انہوں نے اپنی ایک زوجہ کو بھی ملے اور ان کو بھی خواب میں یہ کہا کہ میں یہ جو خاک میرے سر میں اور استغفار استغفر اللہ, اور یہ جو मैं परेशान हूँ, ये मैं करबला के वाकया से परेशान हूँ, और वो गमजदा थे। तो इसलिए ये गम का महीना है, ये सब मुसलमानों का महीना है, ये किसी एक फिरके का महीना नहीं। और फिरके तो जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के पहले ही इस पारे सूरत अल बकरा में मना फरमा दिया है कि आप फिरकों में मत बैठे। दूसरी कौम है जो आपसे पहले जितनी भी कौमें गुजरी हैं, जितने भी 124,000 कम पेश पैगम्बर और रसूल यहाँ पे आए हैं, 355 से ज्यादा रसूल आए, और उन सब ने जो है वो फिरकों में बट के और फिर अपने दीन से हट गए। इसी तरीके से अब हम भी यही साफ कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो इनसे थोड़ा सा हमें यह भी सोचना चाहिए कि कल जब हम क्यामत वाले दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे की तरफ देखेंगे कि वो उनका झंडा कहाँ लगा हुआ है, और उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो हम किस मुंह से जाएंगे कि जब उनके नवासों को, उनकी बीबियों को, उनके छोटे छोटे छह छह माह के बच्चों को हम लोगों ने, हम उस वक्त जो मुसलमान थे, इन्होंने ही शहीद किया था, और वो मुनाफिकीन थे या जिस तरह भी थे, ये तो अल्लाह ने डिसाइड करना। लेकिन जो लोग अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते वो मुर्तद हो जाते हैं, और जो मुर्तद होता है वो काफिर से भी बदतर होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे की तरफ इस नगाह से देख सकेंगे कि आज हम क्या कर रहे हैं और कल हम क्या, जो आज बोएंगे वो कल काटेंगे। तो लिहाजा मकसद ये है कि हमें गमे हुसैन और गमे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जरूर शामिल होना चाहिए। और आपको पता है कि इस्लाम जिंदा ही होता है करबला के बाद, और आज जो जुल्म हो रहा है दुनिया भर में इसकी वजूहात क्या है, इसी पे तो करबला में ये हुआ था कि आप एक अल्लाह को माने, एक आखिरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखे और उनकी हदीस और उनकी सुन्नत पे कामल रहे। तो राजा साहब मेरा ख्याल में कि हमारे लोग काफी यार पढ़े लिखे हैं, वो समझदार है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा इस कमान में रहते हैं कि शायद हमारी दौलत या हमारी चीजें जो है ये हमें बख्शिश में काम आ जाएंगी। उनको चाहिए कि अपने अपने मसाजिद से रिव्यू करें और इस पे सवाल करें, क्योंकि सवाल करना ये इनका हक है। इस्लाम जो है वो इजाजत देता है डिस्कवरी की, और डिस्कवर करो और सवाल हो जवाब करो ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा इल्म आए, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनी सुनाई बात पे अमल करेंगे तो इससे जो है वो आप अपने ऊपर जुल्म करेंगे। जी राजा साहब।
0: शाह साहब आपने बजा फरमाया। शाह साहब हम जिन ममालिक में रहते हैं उन ममालिक में क्या हमें उनके कानून का एहतराम करने में हमें इस्लाम ने मना किया है?
1: नहीं जी, बिल्कुल नहीं किया, बल्कि इस्लाम इतने वाज़ह अल्फाज में कहता है कि अगर आपको उस मुल्क के कोई आयन या वहां के कोई चीज से आपको तंगश है तो आप वहां से हिजरत कर जाए। ये पूरी दुनिया अल्लाह की है, और आप किसी और मुल्क में चले जाए हिजरत कर जाए, ये हिजरत का पैगाम है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़ालिम की हुकूमत से जो है वो कुफर के हुकूमत जो है, जो कुफर काफर होते हैं उनकी हुकूमत में अगर सुलह सफाई से आप रह सकते हैं, अमन से रह सकते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर ज़ालिम हुक्मरान है तो आप वहां से हिजरत कर जाने का आपको हुक्म है। तो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर आपने बात किया तो यहाँ पे हमें हर चीज की सहूलत है, लेकिन हमने कुछ चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जैसे कि इस वक्त बहुत हाईलाइट हो रहा है ये जो फुटबॉल का फैंस जो कत्ल हुआ है कोपेनहेगन में, इसलिए लांगेब्रो के नीचे जहाँ पे मैंगो फेस्टिवल भी और दूसरे बहुत ज्यादा फेस्टिवल लगते हैं, बल्कि लोग समर में वहां पे बात वगैरह भी करते हैं। वहां पे जो कोई एक हफ्ता पहले नॉर्वे का और एक अफ्रीकन मुल्क का फुटबॉल मैच था और बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, तो उसके अंदर कुछ स्वीडिश लोग जो थे वो बैठे हुए थे और वो नॉर्वे की जीत पे नाराबाजी कर रहे थे। तो वहां पे एक अफ्रीकन जो डनमार्क का रिहायशी है और पहले भी वो बहुत सारे केसों में जेल काट चुका है और कत्ल के भी इल्जाम में वो जेल काट चुका है, उसने उस स्वीडिश 32 साल स्वीडिश को जो है वो इतना मारा और उसके साथी को कि वो जो 32 साल था वो जिंदगी खो बैठा। तो हम सब लोग मैंने आज भी और कल भी लिखा है कि भाई हम सब पाकिस्तानी हम लोग कम्युनिटी जो है यहाँ पे हम उनके बराबर के गम में शरीक हैं और हमें ये नहीं चाहिए ऐसे करना। लेकिन ये इस इसके पीछे जो कानून बनाए गए हैं, जो इसके पीछे काले कानून हैं, उनको खत्म करना चाहिए। इसके ऊपर डायलॉग होना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट लुक रासमुसन और मॉडर्न स्मिथ की जो अपनी
0: शाह साहब एक सवाल उठता है कि कोई देखे ना जहां जुर्म होगा वहां तो कानून शाह साहब हरकत में आएगा ना। जब कानून हरकत में आता है तो उसे तो हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कहते ना।
1: जी ठीक है, लेकिन वो आदमी जो है वो अभी तक यहाँ पे आजाद है और पुलिस ने कहा है कि अगर आप इन लोगों को देखे इसको
0: देखे। लेकिन शाह साहब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं हमेशा आप कानून की बात करते हैं, यहाँ तो कानून का एहतराम किया जाता है। जो भी कानून की इज्जत में आ जाता है उसका बचना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी सी डील मिल जाती है। तो शाह साहब मौसम की तरफ आते हैं, अपने सियासत की तरफ आते हैं। शाह साहब आप बताएं, आपका ज़िंदगी का बहुत तजर्बा है, क्या सियासत जो है अपने नाम के लिए की जाती है या सियासत लोगों के लिए बेहतरी के लिए की जाती है?
1: ये अपने और अपनी फैमिली के लिए यहाँ सियासत की जाती है, यहाँ लोगों के लिए आवाम के लिए नहीं। यहाँ पे आप वोट लेते हैं दोस्ती यारी के नाम पे और फैमिली बैकग्राउंड के नाम पे, लेकिन आप जैसे कि ये जो वाकया मैं जिसको बयान कर रहा था, ये पांच मंजर जो है ये इसी चीज की हमारी नेगलेसी की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से ऐसे लोग इस मुल्क के अंदर आ गए। आप ये देखेंगे जो मैंने आज उनको वाजा तौर पे लिखा है, मैंने आपको कापियां भी उसकी भेजी हैं कि देखें अगर आपने ये कानून जो है अगर ये चेंज ना किए होते तो आज हमारे पढ़े लिखे फैमिलीज, हमारी जो हम लोग यहाँ सेटल्ड हैं, हमारे बीवी बच्चे जो हैं वो बजाय दूसरे मुल्कों में दूसरी जगह पे या पाकिस्तान में जिलों पार होने के अगर वो यहाँ पे आ जाते तो आज बेहतर तरीके से ये मुल्क चलता। लेकिन आप लोगों ने दूसरे मुल्कों का मजाक उड़ाया कि ये
0: तो
1: मुसलमान।
0: इस पर कितने सियासतदान लिख रहे हैं जो बात आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इस पर कितने सियासतदान कम्यून के मेंबर, रीजन के मेंबर, पार्लियामेंट के मेंबर कितने लिख रहे हैं? तो शाह साहब जब कानून सख्त होते हैं तो फिर पार्टियां उस चीज को उठाती हैं, लोग उनकी जो फेवर में होते हैं उनकी वोटों की तादाद बढ़ जाती है, कम्यून में बढ़ जाती है, पार्लियामेंट में बढ़ जाती है। यहाँ तो जमहूरियत है, जिसके पास अक्सरियत होगी वो अपने कानून मंजूर करवा लेगा।
1: देखिए जी, मैंने आपको पहले कहा कि मुझे अपने सियासतदानों से जो यंग सियासतदान है बेशक वो मुझे जो बुरा भला जो मर्जी के मुझसे उनसे ये उम्मीद नहीं कि वो इस तरह की बात जो है वो हाईलाइट करेंगे। वो ये तो कहते हैं कि हमने अखबारों में लिख दिया, हमने फलानी जगह कर दिया। क्या जो इलेक्टेड है क्या उन्होंने अभी तक कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस या इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जबान में या अपने रेडियो पे की है? कोई आपके रेडियो पे एक हफ्ता हो गया इस तरह के वाकयात, बल्कि इससे पहले के जो कानून सख्त बने हैं, जो डिपोर्टेशन के कानून बने हैं कि आप गैर मुल्कियों को थोड़ी सी जरा पे बात, क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई बात की है? अब ये कहना कि जी हमारे कोई इलेक्टेड काउंसलर नहीं, हमारे रिजून में भी इलेक्टेड काउंसलर है, हमारे कोपनहेगन में भी इलेक्टेड काउंसलर है, क्या इन लोगों ने आके इन सियासतदानों ने कोई ऐसी बात या ऐसे लॉ फोर्सेस जो है वो लोगों के सामने पेश की है? और क्या उन्होंने इनविटेशन आपको या हम लोगों या दूसरे जो सियासतदान है उनको बुलाया या ऐसे सोशल वर्कर्स को बुलाया उस गैदरिंग के अंदर जहाँ डैनिश बैठे हो, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग बैठे हों, डैनिश फ्रंट के पार्टी के लोग बैठे हों, मॉडरेट के बैठे हों, डेनमार्क डेमोक्रेट्स के लोग बैठे हों, सोशल डेमोक्रेट के सब पार्टी के लोग नुमाइंदे बैठे हों और उनके सामने अपनी फौसले भेजे, उनके सामने अपना नुकता वाजा करें। क्या कोई है ऐसी हिम्मत करने वाला? हालांकि यहाँ पे इन लोगों को हॉल फ्री मिलते हैं, इनको हर जगह फ्री हॉल मिलते हैं, जैसे कि कल इन्होंने मैंगो फेस्टिवल लगाया था, ऐसी जगह इनको फ्री मिलती है, वहां पे ये लोगों को अच्छे मौसम में बुलाकर गैदरिंग कर सकते हैं और लोगों की राय ले सकते हैं कि हम में कौन सी फॉल्ट्स हैं वो आप गिला करें और हम में जो जो तुम में जो फॉल्ट्स हैं, आपके कानून में जो फॉल्ट्स हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छा हो। تو پھر بات ہوتی ہے. یہ کہنا کہ فلانا وزیر میرا یار ہے, فلانا میرے علاقے کا ہے, فلانا میں اس سے بہت بات کرتا ہوں, میں فلانے کو جاتا ہوں, میں فلانے کو بہت عرصے سے جانتا ہوں, یہ سب غلط باتیں ہیں, یہ رومرز ہیں, یہ صرف اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں. جو اصل اگر یہ چیزیں واضح طور پہ پہنچ جاتی کہ یہاں کے قانون میں کیا کیا شکے ہیں, یہاں کے قانون جو بنائے گئے ہیں وہ کتنے غلط ہیں, تو آج اس طرح کی چیزیں ہمیں سننے میں نہ آتی. آج جو اسلام مخالف لوگ ہیں, جو اسلام کو سرے ہم برا بلا کہہ رہے ہیں, بلکہ بینرز پہ لکھ لکھ کے برا کہہ رہے ہیں, تو مجھے میں شرمندہ ہوں کہ اپنے ینگسٹر سے کہ کیا انہوں نے کوئی باتیں کی. نہیں, ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے ملک کے اوپر دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتا ہے, وہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں, وہ دوسرے ممالک کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں, لیکن اس ملک کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں, جہاں ہماری اب چوتھی جنریشن, راجہ صاحب پہلی دوسری تیسری نہیں, اب چوتھی جنریشن تیار ہو رہی ہے اس ملک کے اندر ہماری, اور اس جنریشن کے لیے کیا ہم نے تیسری اور چوتھی جنریشن کے لیے کچھ کیا ہے؟ نہیں, ہم نے ایک چیز چھوڑ دی ہے کہ ہمارے بچے بہت پڑھ گئے ہیں, وہ ڈینش بولتے ہیں. کیا ان کو ڈینش قوانین کا پتہ ہے؟ کیا ان کو ہماری پرابلمز کا پتہ ہے کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں؟ کیا ان کو اس بات کا خیال ہے کہ ہماری بوڑھی مائیں, بیوہ مائیں یا دوسرے جو ہیں ہینڈی کیپ فرق ہیں ان کی ان کی؟
0: شاہ صاحب, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے قانون کو ہر وقت چیلنج کیوں کرتے ہیں, ہم اپنی عادات کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ آپ کافی سینئر ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جب آپ جہازوں پہ سفر کرتے تھے, ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے, تو آپ کو امیگریشن میں کتنی سہولیات تھیں, شاپنگ سینٹر پہ کتنی سہولیات تھیں, آپ کی چیکنگ بالکل نارمل ہوتی تھی. اس وقت ایک زمانہ تھا آپ کے پاسپورٹ پہ بچے لکھے ہوتے تھے, تو آپ بغیر پاسپورٹ کے بچوں کو جو ہے نا اپنے پاسپورٹ پر ایک دوسرے ملک میں لے جا سکتے تھے, کوئی روک ٹوک نہیں. تو شاہ صاحب, جب ہم نے غلط کام کیے, قانون کو جگہ جگہ توڑا, تو پھر سختیاں ہوگی. تو اب ہر چیز پر ہم چیختے ہیں اور ہر چیز کو ہم چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں.
1: یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ جھوٹ, جھوٹ کی علامت جو ہے نا, جھوٹ بولنا, یہ شیطانی وسوسے سے پیدا کرنا, غبیت کرنا, اپنے آپ کو اونچا پیدا کرنا, اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. ہم نے اپنی عورتوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا, ہم نے ان کو یہاں کے قوانین نہیں سکھائے, ہم نے یہاں پہ کوئی ایسی تھنک ٹینک یا ایسی کمیٹیاں نہیں بنائی جو اس طرح کے, جو میاں بیوی میں اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو ان کو کمپرومائز کیسے کرایا جائے, ان کو حالات سے کیسے ٹھیک کیا جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں, سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہندو بھی رہ رہے ہیں, دوسرے قومیں بھی رہ رہی ہیں, ان کی اتنی زیادہ پرابلمز نہیں جتنی ہم مسلمانوں نے یہاں پہ کریٹ کی ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے چند ایک مسلمان, یہ کس وجہ سے, یہ قانون کی وجہ سے, قانون کے اوپر کس سے بولنا ہے, یہ ان سے انہوں نے بولنا ہے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں, جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں, جن کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جا کے ان خامیوں کے اوپر, جو قانون کے اندر خامی ہے ان کے اوپر بولیں گے. لیکن وہ یس سر کرنے والی قوم ہمیں ان پہ اعتبار کر لیتے ہیں, اور انہی کے اعتبار میں آج جو ہم جلسے بیٹھے ہوئے ہیں, آج جو ہمیں پرابلمز ہیں ہمارے فیملیز کو یہاں اکٹھے کرنے پہ, ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے, دیکھیں جو نئے فلوٹنگ آ رہی ہے, جو نئے یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, ان کو اور ان کی فیملیز کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس ڈنمارک کے اندر سیٹل ہونے میں, لیکن ہم لوگ جو ہیں جو یہاں پہ
0: بات آپ کر رہے تھے گیدرنگ کی, شاہ صاحب جو پرابلمز کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, تو شاہ صاحب ایک نیچرل گیدرنگ ہوتی ہے, جو بھی فیسٹیول ہوتے ہیں گیدرنگ کے لیے ہوتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں سیاستدانوں کو بلاتے اور آپ والی بات, وہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اپنے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے, جمہوری طریقے سے ہونے چاہیے, لڑائی کی شکل میں نہیں ہونے چاہیے, پیار محبت کی شکل میں ہونے چاہیے. شاہ صاحب یہ کام ہم کرنا نہیں چاہتے, ہمیں فکر ہوتی ہے پاکستان کی سیاست کی کہ میں بڑا جو ہے وہ تیس مار خان ہوں, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. تو شاہ صاحب یہاں رہتے ہوئے ان ملکوں کی ہم سیاست کرتے نہیں ہیں, شاہ صاحب ہم صرف ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے؟ شاہ صاحب
1: جی بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. کل میں اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ گیا ہوا تھا, چھوٹے آئے ہوئے تھے سارے, تو ان کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے, तो उनको साथ लेके गया था मैं, लेकिन मुझे अफसोस पड़ा हुआ कि वहां पे भी जैसे आपने बात की कुछ सियासतदान वहां पे घूम फिर रहे थे, लेकिन वो इस तरह घूम फिर रहे थे कि सिर्फ फोटो सेशन की नजर में, कोई कोई किसी को अपने ख्यालात के बारे में ही बता रहा था, कोई किसी को कोई अपने ये जो याददाश्त होती है कि मैं आपके लिए क्या करूंगा क्या नहीं, वो नहीं बता रहे थे, कोई ऐसे पंफलेट नहीं तकसीम किए जा रहे थे कि भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी चीज की भी, तो रिहाइश की प्रॉब्लम है या आपको बच्चों की प्रॉब्लम है या आपको स्कूल मैटर्स या किसी चीज की भी आपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा जरूरत है तो आए हम आपसे खुल के बात करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि ये लोग सिर्फ फोटो सेशन, चंद एक बंदों के साथ खड़े होकर फोटो सेशन, किसी को सलाम करने में भी बड़ी रख रखाव रखते थे, दूर से हेलो करके जा रहे थे। तो ये एक एक वो अकड़पन है जो अपने आप को चदराहट में रखता है। ये इसीलिए लोगों के लोग जो हैं, मैं आपको ये एक चीज वाजह कर रहा हूं कि मुझे जो नेक्स्ट इलेक्शन नजर आ रहे हैं उसमें हमारे पाकिस्तानी मेजोरिटी जो है वो मेरा ख्याल में डेंचो को वोट डालेंगे या वो दूसरे किसी और बंदे को नेशनैलिटी को डाल देंगे, अपने लोगों को वो वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि अब 55 साल से ऊपर हमने इनको आजमा लिया है, ये सवाए झूठ और अपने खानदानी रवायात को कायम रखने के अलावा इनके अंदर कोई चीज नहीं। ये मकर करते हैं और मकर करने वाले लोग जो होते हैं उनको उनके ऊपर अल्लाह की रहमत नहीं आती। आप खादम हैं, आपने वोट लिया, आपने आईजी दिखाई, आप लोगों ने अपना पैसा खर्च किया हर एक चीज की और आप इलेक्ट हुए, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों से आकर बात करें, अपनी चौधार ना करें कि मैं कौंसलर, कौंसलर इज नथिंग। आपकी जो वैल्यूज हैं वो हमें पता है, आपको घोड़े बात नहीं करने देते, आप कालों के सामने अकड़ कर चलते हैं। माजद के साथ मैं इनके इनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं इनको पीछे से जानता हूं कि ये क्या है, मैं भी क्या था। हम लोग झूठ झूठ का सहारा ले रहे हैं, हम लोग अपनी अपनी जो गब्बियत है, हम जो बातें करते हैं एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये जो आज हालात पैदा हो गए हैं ये इतने गंभीर हैं कि हमारे साथियों को नहीं पता। आप ये देखिए कि हमने 2017 से डेली बेसिस पे, एक नहीं कि वीकली हम बात करते हो, हमने डेली बेसिस पे यहाँ कहा था कि ये जो उबर है इसको मत तंग करो, आने दो, अपने वोमेनशिप बचाओ, ये पुराना कानून जो है टैक्सियों का इसको बचाओ। तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा जी शाह साहब पागल है, ये अपना क्या नाम है राजा को फूल पागल है जो शाह साहब को हर वक्त रेडियो पे ले आता है, ये बातें करता है। अब 500-600 टैक्सी जो है ये वेटनाम की आके यहाँ पे खड़ी हो गई है, अब वो जो है वो ड्राइवर भर्ती कर रहे हैं, वो ड्राइवर चलाएंगे, वोमेनशिप किधर गई, कहाँ गए आपकी वोमेन, जो एक सेल्स कैप रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों कि अब लोगों ने, लोगों को अपनी परमानेंट तनख्वाह मिलेगी, वो उससे ज्यादा फायदा उठाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं, टेस्ला ने और चाइनीज ने ऐसी गाड़ियां डेनमार्क में और यूरोप में भेज दी हैं कि जो बगैर ड्राइवर के आपको मुहैया होंगी, आपको विद इन नो लिमिट कोई टाइम नहीं होगा तो आपके घर के सामने टैक्सी आ जाएगी, आपके लिए सेफ होगी, आप उसको आपने पहले एड्रेस फीड कर दिया होगा, वो आपको लेके आपके जहां आपने जाना है वहां आपको पहुंचा देगी, वो आपको ड्राइवर से ज्यादा सेफ आप उसमें इसलिए होंगे कि वो आपको अनवाइंड यानी कि उल्टे सीधे रास्तों में लेकर नहीं जाएंगे, आपको ड्राइवर के साथ तकरार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने पेमेंट कर दी, जो पेमेंट आपने कर दी हुई है उसी से बेशक वहां पे गाड़ी आसान चल रही है, तेज चल रही है, ट्रैफिक बेशुमार है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी कि अगर आपने 150 करोड़ दिया है तो वो 150 करोड़ में ही आपको उस जगह पे पहुंचाएगी। तो अब भाई ये नुकसान किसका हुआ, ये नुकसान उन लोगों ने करवाया है कि जिनके जेहन में ये बात नहीं आ रही थी कि भाई ये फ्यूचर हमारा कितना डिस्टर्ब होगा, हम ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, हमने इंसानियत के यहाँ पे लोगों को जो काम करके ये कर रहे थे उनके लिए क्या कर दिया। अब वो कंपनी जो है वो 3,000 के करीब जो है वो ड्राइवर जो रखने जा रही है, और मेरा तो यंगस्टर से यही मशवरा है कि अपनी गाड़ियां दे दें और इस तरह काम करें, कम से कम आपको फिर ये पेंगे मिलेंगे, आपको बीमारी के पैसे मिलेंगे, आपको इंश्योरेंस मिलेगी, आपके इंश्योरेंस होगी, आपके सब कुछ अखराजात जो वो कंपनी उठाएगी, और आप मजे से 2 महीने की छुट्टियां करें, पाकिस्तान में जाएं, बच्चों के साथ अमेरिका में जाएं, दुनिया भर में जाएं, आप लूट मार करें, जो मर्जी करें, वो आपके लिए फायदा है। लेकिन ये अच्छा है, लेकिन जब ये दूसरी बजाय ड्राइवर की गाड़ियां भी आ जाएंगी आपके मुकाबले में, तो आप अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप 2 डिफरेंट कल्चर में रह रहे हैं, आप डेनिश कल्चर में रह रहे हैं और पाकिस्तानी कल्चर में रह रहे हैं, आपने दोनों कल्चरों का जो है वो को डिफेंस करना है, और ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो राजा साहब, ये जितनी भी चीजें हैं ये कम्यूनों में डिस्कस करने वाली है कि हमारे जो यहाँ के जो हमारे
0: सवाल है, आप माशाल्लाह हर चीज को समझते हैं, शाह साहब, फल खाए जाते हैं, फल अच्छे होते हैं, बस फल बड़े पॉपुलर होते हैं, डेनमार्क में भी बहुत सारी दुनिया का हर फल यहाँ मिलता है, हर दुकान पे मिलता है, हर मार्केट में मिलता है। तो शाह साहब, मेले बड़ी अच्छी चीज़ हैं, गैदरिंग होनी चाहिए, आउटिंग होनी चाहिए, लेकिन मेलों का नाम जो है वो जगह मुफ्त ली जाएँ और वहाँ फंड रेजिंग का काम किया जाए, और ये भी एक सवालिया निशान है। तो शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आम सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, दुकानों में ख़रीदा भी जाता है, जगह जहाँ भी जाते हैं ख़रीदते हैं, लेकिन शाह साहब, ये कोई मुकद्दस फल है?
1: मैं इस चीज को बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि अगर आपने फंड रेजिंग करनी है, कुछ करना है, तो आपके लिए जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, इस मुल्क के अंदर ऐसे कानून हैं जो आपको इजाजत देते हैं। और इसी तरीके से हमने जब यहाँ पे शुरू में मुख्तलिफ कल्चर सेंटर या मस्जिद बनाई, तो गवर्नमेंट ने लोगों को सपोर्ट किया, जगह दी। तो यहाँ पे तो हर चीज जो है वो गवर्नमेंट के जरिए, जहाँ आप टैक्स पेयर हैं और आप सही तरीके से रह रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप अप्लाई करें, आप चर्च मिनिस्ट्री को, कल्चर मिनिस्ट्री को आप अप्लाई करें, आपको हर चीज जो है बाय लॉ यहाँ पे मिल जाती है और ये देते हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या उसके अंदर मेरा नाम होगा या नहीं होगा, ये मसला सबसे बड़ा राजा साहब, कि उसके अंदर क्या ये तो कीर्शा के कल्चर सेंटर है, या इसके अंदर कौन बड़ा बैठा हुआ है, क्या इसके अंदर तो कीर्शा का हाथ है या नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है। आप देखेंगे यहाँ पे 7 मस्जिदों की यूनियन बनी हुई है, वो कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे DMU बनी हुई है, वो कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे DMC बनी हुई है, वो कुछ नहीं कर रहे। तो जब आप कुछ कर नहीं रहे और यहाँ पे इस्लाम के बारे में और दूसरे कल्चर्स के बारे में, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको जब कानून का पता नहीं, तो आप कानून वालों से बात करें। ये नहीं कि आपके बच्चे पढ़ लिखे हैं जी, वो जी हमसे ज्यादा तो कौन नहीं जानता। बात यह है कि यहाँ सब डेंचों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबके बच्चे जो है वो फलके थिंग में नहीं बैठे हुए, सबके बच्चे जो है वो फिजकेरी उल जो है फलके थिंग के वहां नहीं बैठे, वहां सबके बच्चे जो है वो वकील नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई चीज होती है तो वो मुख्तलिफ वकीलों के पास जाना पड़ता है। अभी आप एक कोई आपके प्रॉब्लम आ जाती है तो आप एक हर वकील के पास नहीं जा सकते, आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम है, आपने उस वकील को ढूंढना है और उस काबिलियत के वकील को ढूंढना जो आपका मसला हल कर सके। तो यहाँ पे जो मसाइल हैं हमने इकट्ठे कर लिए, इसको जब तक आप पब्लिक को इकट्ठा करके उनके मीनिंग्स नहीं लेंगे, बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर फसाद किए, बगैर कबीयत किए, आप इन चीजों को समझ नहीं सकेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ

0: है, हमें वो सुन रहे होंगे, उनको तकलीफ होगी कि शाह साहब क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन ये उनका हक बनता है, ये उनके उनका मंशूर है, ये उनके उनका फराइज है, उनके फराइज में ये शामिल है कि वो आए बाहर निकले और आकर अवाम जिनसे वो, और जी मेरी फैमिली जी मैं जर्मनी में छुट्टियां गुजारने जा रहा हूँ, जी मैं लाहौर में छुट्टियां गुजारने जा रहा हूँ, मैं फलाने, भाई क्या जब वोट डाले थे तो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें वोट डाले थे, तुम्हें तो लोगों ने वोट डाले थे, तो तुम उन लोगों की प्रॉब्लम को पहले सुनो, उनका मसाइल हल करो, उनके लिए जो इस वक्त इतने सख्त कानून बन चुके हैं। और वो
1: शाह साहब आपकी आखिरी बात करते हैं, फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको लेंगे। शाह साहब यहाँ लोग कहते हैं ये बातें लोग करते रहते हैं इसी तरह, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सियासतदान का काम है सियासत करना, जब यहाँ की सियासत जो है वो की ही नहीं जाती, बंद कमरों में खाली गप्पे मारी जाती हैं और लेक्चर जाड़े जाते हैं, तो शाह साहब इससे कभी भी तब्दीली नहीं होगी। शाह साहब आप बहुत शुक्रिया, आपको दूसरे हिस्से में लेंगे आपको। सामान्य नाज़रीन ये थे शाह साहब, इनकी आप बात सुन रहे थे, अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए, सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: जुलूस भी निकाला जाता है, फिर कानून की हम खिलाफ वर्जी भी करते हैं, जिस चीज़ों से मना किया जाता है वो चीज़ें भी हम करते हैं, तो शायद फिर आस्ते आस्ते छोटी छोटी सख्तियां भी आ जाती हैं, फिर हम सियासतदानों को कसूरवार भी कहते हैं।
1: जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिनका हम एतराज तो करते हैं, हम जो हुकूमत या जो हमारे मुल्क के इदारे होते हैं या हमारे मुखालिफिन होते हैं, हम उन पर तो एतराज करते हैं कि ये हमारे खिलाफ ये हर्जा सराई करते हैं और हमारे खिलाफ ये बातें करते हैं, गैर मुल्कियों के खिलाफ बातें होती हैं, लेकिन उसमें कुछ कसूर हमारा अपना भी होता है जिसे हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अलाउड हैं हुकूमत की जानिब से, मुल्की कवानीन के मुताबिक हमारे लिए वो जायज हैं, लेकिन ये कि उसमें भी बहुत सारी एहतियात है जो अगर उसका अंसर रख लिया जाए, एहतियात के साथ वो काम किए जाएं जिससे दूसरों के लिए कोई मसला ना बने। मिसाल के तौर पे आजकल पार्किंग के बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो वो मुख्तलिफ जगहों पर हो रहे हैं। इसी तरह जो आशूरा का जुलूस है, बिल्कुल कानून इसकी इजाजत देता है, तो जब उसकी इजाजत है तो उसे कोई अमर माने नहीं है उसमें कि आशूरा का जुलूस है जो वो ना निकाला जा सके। उसमें अलबत्ता ये कि उसको बेहतर किसी तरीके के साथ मैनेज अच्छे तरीके के साथ किया जा सकता है। तो जिन जिन चीजों की तो हमारा कानून हमें इजाजत देता है उन पर किसी किसी तरह की कोई कदम, उन पर कोई इस तरह का कोई एम्बार्गो है जो वो नहीं होना चाहिए। बहसियत डेनमार्क के शहरी हमारे पास वही हकूक हैं जो बाकी रिलीजियंस को हासिल हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादा मुनासिब ये है कि अगर इन हमारे जो प्रोग्राम हैं उनकी मिसाल के तौर पे उनकी जो तरतीब है उसको बेहतर किया जा सकता है, आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे के साथ रवाबत करके। तो मस्जिद के प्रोग्राम होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही दिन दो मुख्तलिफ मस्जिद में प्रोग्राम होते हैं, तो फिर जाहिर है लोग वहां पर भी शामिल नहीं हो सकते, किसी एक जगह ही बंदा शामिल हो सकता है। तो अगर इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए और इसकी तरतीब है जो उसको बेहतर कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसाइल हैं जो वो गैर जरूरी तौर पर जो हम तनकीद का निशाना बनते हैं उससे हम बच सकते हैं।
0: शाह साहब, छुट्टियां ख़त्म होने के बाद पार्लियामेंट दोबारा खुल जाएगी, तो उसका हम बात कर रहे थे, गैदरिंग की, मेलों की बात कर रहे थे। अच्छे वक्त में जब ये गैदरिंग की जाती है, बड़ी अच्छी गैदरिंग होती है, तो हम बातें तो बहुत करते हैं, तो ये जितनी पार्टियों के सियासतदान होते हैं, एक स्टेज बनाया जाए, जो मुंतजमीन होते हैं वो पूरी साल अपनी तैयारी करें, लोगों को दावत दें, एक स्टेज बनाएं और सारी पार्टियों के, मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों को बुलाएं, वहाँ डिबेट हो, बातचीत हो, सारा जो है वो ये इंतज़ाम होना चाहिए और जमहूरी तरीके से करें, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है, ये लड़ाई झगड़े वाला मुल्क तो नहीं है।
1: जी बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे हमारी बदकिस्मती ये है कि हम चूंकि मुख्तलिफ ख्याल के लोग हैं और हमारी जो अक्सरियत है वो हमारे जो पॉलिटिकल निज़ाम है उसके साथ वाबस्ता नहीं है। हमारे बहुत थोड़े लोग हैं जो जो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है, और यही वजह है, गुज़श्ता हमारी एक दफा बात हुई थी आपके ही प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब हमारे कुछ नौजवान हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है जब हम इस काबिल भी नहीं बन हो सकते कि हम अपना एक नुमाइंदा जो पार्लियामेंट में भेज दें, तो बमुश्किल हम 10 काउंसलर्स हैं जो पूरे डेनमार्क में पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बैकग्राउंड वाले हैं। तो ये इसकी जो असल वजह है वो यही है कि हम में से हर शख्स है जो वो अपनी अपनी दुनिया में मगन है और अपने आप को, हर बंदा है जो दूसरे के लिए तामुन करने की बजाय दूसरे की टांग खींचने की, मैं बल्कि अक्सर कहता हूँ कि एक दूसरे का हाथ पकड़ने की बजाय एक दूसरे की टांगे खींचने की कोशिश ज्यादा की जाती है। तो ऐसी सूरत में जाहिर है जब हमारी कम्युनिटी आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, इत्तेहाद नहीं होगा, तो हम किस तरह बाकी लोगों को जो मुख्तलिफ ख्याल के लोग हैं, आज तक मुझे ऐसा कोई कम अज कम मौका नहीं मिला कि जहां पर मुख्तलिफ ज़हनियत के लोग बैठे हों और वो आपस में अपनी अपनी वाबस्तगियां कायम रखते हुए इसके बावजूद ये कि हम अपने अपने मसाइल डिफाइन कर सकें कि हमारे लिए मुश्किलात कौन कौन सी हैं और उसके लिए हम सियासी तौर पर एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, और बजाय इसके कि हम अपनी अपनी बल्ले बल्ले बनाने की बजाय कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम कर दिया, तो अगर ये इज्तमाही तौर पर काम किए जाएं तो इसमें بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. الحمدللہ پبلک کے مسائل ہیں جو ان کو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामान नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। आप सबकी बात सुनते रहते हैं, सियासी तौर पर भी बात सुनते रहते हैं, सियासतदान अपनी बात करते रहते हैं। आज हमारे साथ वो सियासतदान हैं जो डेनमार्क की सियासत को उन्होंने आजकल फोकस किया हुआ है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबल जो है वो डेनमार्क का है, डेनमार्क की सियासी पार्टियों की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ सरपरस्ते आला चौधरी शौकत साहब जो है वो बरतानिया की फिजाओं से हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपको बरतानिया की फिजाओं से कोपेनहेगन की फिजाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका और आपके चैनल का और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चौधरी साहब, आप किस सिलसिला में गए हैं, कुछ सियासी मीटिंग के सिलसिला में गए हैं या कि वैसे भी गर्मी इंजॉय करने गए हैं?
2: नहीं राय साहब, मैं एक अपने गैदरिंग, अपने इवेंट था हमारा शादी का, फैमिली का, तो मैं उधर आया हुआ था। 2-3 दिन हो गए हैं शादी के सिलसिले में इधर आया था, क्योंकि हमारी फैमिली की एक शादी थी इधर लंदन में, तो उस सिलसिले में आया था शादी पे।
1: लेकिन चौधरी साहब, जो हमारे पास खबरें हैं, कुछ सियासी मीटिंग भी होनी है कुछ लीडरान के साथ, इसको ब्रेकिंग न्यूज दे ना।
2: कोई ऐसी बात नहीं है राय साहब, आपको पता ही है, मैं तो आपको पता ही है आस्ता आस्ता खुली किताब की तरह ही होता हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह जो होगा फिर आपको, पहले आपको ही बताऊंगा कोई सिलसिला इस तरह हुआ था।
1: तो इसका मतलब है कोई बात है। चले चौधरी साहब, मौसम कैसा है बरतानिया का?
2: माशाल्लाह जी, मौसम बहुत, कल तो बहुत अच्छा था मौसम, टेम्परेचर भी बेहतरीन था और जो है ना गर्मी भी थी। आज थोड़ा सा जो है ना धूप नहीं है, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल ही है, गर्मी की तरह टेम्परेचर है, 25-30 बस इस तरह का है, 23-25 के लगभग है टेम्परेचर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है जी इधर।
1: तो जो सब सियासी माहौल को किस तरह फील कर रहे हैं बरतानिया का?
2: वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, बड़े अच्छे मनज़म तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इस तरह का कोई का वो इशू नहीं होता, लेकिन ये सब मिलके काम करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है ना रابطے रखते हैं, एक दूसरे को साथ लेके इज्जत और इत्राम के साथ सब दोस्त भाई चलते हैं।
1: तो सब इज्जत इत्राम से ही चलना चाहिए, इसीलिए वो लोग तरक्की करके आगे निकल चुके हैं ना, तो हम अपने कानून ज्यादा अपने ऊपर सख्त करवाते जा रहे हैं।
2: जी बिल्कुल राय साहब, यही है, हम जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, एक दूसरे को साथ नहीं लेके चलेंगे, तो ये हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, ग्रुप बंदियां ही होती रहेंगी। तो ये सबसे यहाँ मैंने देखा है कि जो पार्टियां होती हैं वो अपने दोस्तों को, अगर वो एक दूसरे के साथ को आगे पीछे भी होते हैं, तो वो दूसरों को बुला के कहते हैं यार इनको साथ मिलाए ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारी पार्टी एक बड़ा धड़ा हो, तो जो अपने साथी है उनको छोड़ के नहीं जाते। ये सब जो साथी पुराने भी होते हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं, कहते हैं कि ये हमारी तादाद ज्यादा होगी, हमारी पार्टी बड़ी होगी और हमारे लिए रिस्पेक्ट होगी। तो ये 2-4 बंदे हम खड़े होके कहें कि हम पार्टी है हमारी, तो इस तरह से इज्जत नहीं बनती। तो ये लोगों का मौकफ और तरह से होता है, ये सब दोस्तों को देखा है मैंने, ये सब को साथ लेके चलते हैं।
1: जय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि आप काफी मसरूफ है मेहमान आपके पास बैठे हुए, इंशाल्लाह आप जल्दी वापस आ जाएं।
2: जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी राय साहब, जब आएंगे इंशाल्लाह रब्ता हूँ, बहुत मेहरबानी, सबको सलाम।
1: सामाई नाजरीन, ये थे चौधरी शौकत सरपरस्ते आला जिनकी आप बात सुन रहे थे।
3: सामाई नाजरीन, हमारा किसी से मुतफिक होना जरूरी नहीं है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामान नाजरीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से बराह रास्त पेश किया जा रहा है। सामान, मौसम जो है वो गर्म है, ठंडा है, टेम्परेचर ठीक हो चुका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। ये मौसम जो है सियासत की तरह चलता है, जिस तरह सियासत ठीक भी हो जाती है, तब्दील भी हो जाती है। तो आगे आप बात सुन रहे थे शाह साहब की, तो मुजीब साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के यहाँ डेनमार्क में सदर हैं और SF पार्टी के जो हैं वो मेंबर हैं और सियासत में गहरी नज़र रखते हैं, और हमेशा हम कहते हैं कि वो डेनमार्क की सियासत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उस पर अमली बात भी करते हैं। तो मुजीब साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मोहतरम राजा साहब और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। मुजीब साहब, मौसम तब्दील होता रहता है जिस तरह सियासत तब्दील होती रहती है। पहले दूसरे मुल्कों की सियासत होती थी, अब डेनमार्क की सियासत भी सुबह दोपहर शाम तब्दील होती रहती है, तो क्या खबरें आपके पास?
2: देखिए, सबसे पहले तो आज 5 जुलाई है और आपको पता है कि 5 जुलाई 1977 को एक डिक्टेटर ने जमहूरी निज़ाम के ऊपर शबरोज मारा। तो वो जो जमहूरी निज़ाम को एक डिक्टेटर ने 5 जुलाई 1977 को ख़त्म किया, उसकी आज हम पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जल्दी एक अभी थोड़ी देर के बाद पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग भी है। तो राय साहब, ये है कि मुल्क की तरक्कियों के लिए ज़रूरी होता है कि हर चीज़ का तसलसल जो है ना वो लगातार।
1: आपने जिक्र किया मजम्मत का, तो उसके बाद आपने टाउन हॉल या पार्लियामेंट के सामने तो नहीं जाना?
2: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हम जमहूरी लोग हैं, हम जो है जैसे जमहूरियत के में क्या आप एहतजाज करते हैं वो हमारा एहतजाज होता है, हम वो वाले ऐसा एहतजाज हम नहीं करते कि जिससे जो है ना किसी को डिस्टर्बिंग हो। हमारा एहतजाज सबको पता है, 49 साल से इसका एहतजाज कर रहे हैं। वो जनरल ज़िया उल हक एक डिक्टेटर था, एक डिक्टेटर अल्लाह ताला उसकी मफ़ा फरमाए, वो फोत हो गए, लेकिन एक डिक्टेटर था, उसने एक जमहूरी निज़ाम को तबाह किया और आज वो जमहूरी निज़ाम अगर कायम रहता, शहीद उसकार डिपुटो जिंदा रहते, तो मुल्क की जो है तरक्की उसमें बेहतरी आती, मुल्क में बेहतर तरीके से तरक्की कर रहा था। उस वक्त के दौर में आपने देखा एटम बम की तरफ हम गए, जिसकी वजह से आज सारी दुनिया में आपका नाम हो रहा है। उसके अलावा आपने इस्लामी कॉन्फ्रेंस कराई, सबसे जो बड़ा काम देखे उन्होंने किया, जो मैं समझता हूँ कि वो जनती होगी, उन्होंने कादियानियों को काफर करार दिया। उसके अलावा बेशुमार चीजें हुई जो कि मुल्क के लिए बेहतर थी, लेकिन क्योंकि जो ये सोनी ताकतें जो होती हैं ये हमारे लोगों को इस्तेमाल करके अच्छे लीडरों को फिर जाया करवा देती हैं, तो मैं एज ए सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस डिक्टेटरशिप की मैं मजम्मत कर रहा हूँ। और ये मजम्मत जो है आपको पता है कि हमारे एहतजाज का तरीका होता है, जरूरी नहीं होता कि आपने सड़कों पर जाके कोई आपने डंडे उठा के लेके जाना है जी हम आज मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये सबक नहीं सिखाया गया, हमें एहतजाज करने का तरीका का एज ए जमहूरियत के तरीके से सिखाया गया है, तो उसकी हम मजम्मत करते हैं। बाकी अब आज अगर यहाँ पे लोकल सियासत की, तो आपको पता है छुट्टियों पे है सारे लोग, कमून भी छुट्टियों पे है, रीजन भी छुट्टियों पे है, पार्लियामेंट भी छुट्टियों पे है, लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे भी लोग डेनमार्क में भी छुट्टियां गुजार रहे हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं। मौसम आपको पता है कभी पिछले दिनों में बहुत ही अच्छा था, अभी कभी अंगड़ाई लेता है, कभी सूरज सामने आ जाता है, कभी बादलों के पीछे चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीजें चल रही हैं और बाकी मौसम भी ऐसे ही चल रहा है, आप अपनी कम्युनिटी का मौसम भी ऐसे ही चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो ये है कि
1: कम्युनिटी का मौसम तो चल रहा है कि, और एक खबर जो है मेरे सामने भी पड़ी हुई है, पता नहीं आप तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ एक बहुत बड़े लीडर हैं, मतलब खामोश लीडर हैं चौधरी अशरफ साहब, और खामोश लीडर हैं मलिक नज़ीर साहब, और तीसरे आप भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो सुलह में ये कुछ सुलह की बात, उसमें कुछ छोटी मोटी जो है वो खबरें किसी ने मेरे कान में डाली हैं, आप इसकी तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं?
2: जी ऐसी है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि चंद भाई जो है वो 15-20 लोग बैठे थे उस दिन, बड़े सारे मोजज लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, चौधरी इजाज साहब थे, चौधरी इफ्तखार साहब थे और बेशुमार नाम जो के कुछ जानता हूँ कुछ नहीं जानता हूँ, आगर नदीम साहब उसमें मौजूद थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ पे इन दोनों भाइयों ने सुलह की, और उसमें सब ने खुशी का इजहार किया और सब मुतमिन हुए और हम भी बहुत खुश हुए। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा काम है दो मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह होनी। और फिर आप कम्युनिटी में जितने हम लोग हैं, हम वो लोग हैं कि अब हम एक दूसरे को नजर में रहते हैं, लेकिन ये किसी का वक्त किसी भी खुशहास हो सकता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान का दिन मुकर्रर किया हुआ है, तो फिर हमने एक दूसरे को कंधे देने हैं, हमने एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना है। तो मैं समझता हूँ कि ये परसों ये 2-3 दिन की पहले की बात है, ये बहुत ही अच्छा सुकून था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के दोनों भाइयों में सुलह हुई।
1: जी, सुलह को हमेशा अच्छा ही पॉजिटिव लेना चाहिए। तो मुजीब साहब, आपकी पार्टी क्या कर रही है? कानून तो बहुत सारे तब्दील हो रहे हैं, बन रहे हैं, सख्तियां आ रही हैं, और हमारे थिंक टैंक आते हैं कि सख्तियां हमारी अपनी वजह से होती हैं।
2: बिल्कुल, आपकी बात तो दुरुस्त है जी। सख्तियां हमारी अपनी वजह से, मुराद को आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को नाम नहीं लेते, सारे फॉरनर जहाँ पे है ना, तो उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर बंदे की जो है अपनी सोच है, हर बंदे की। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसमें आप ये देखें कि हमारे जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं सारे, वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे जॉब जॉब्स पे हैं, और उनका एक सोसाइटी में नाम है, तालीमी लिहाज से भी माशाल्लाह हम सबसे आगे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी कम्युनिटी में जब आप यहाँ पे बात करते हैं उलैनक की, ये फॉरनर्स की, तो उसमें खाली पाकिस्तानी नहीं है, उसमें तो सारी कम्युनिटीज आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी, मैं बाकी कम्युनिटीज को भी कोई ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी नहीं है, बाकी कम्युनिटीज में भी बेशुमार लोग बहुत अच्छे हैं, उनके भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके भी अच्छे जॉब्स में हैं। लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा, हमारी कम्युनिटी में माशाल्लाह हमारे यंग जनरेशन के बेटे बेटियां वेल एजुकेटेड, अच्छे जॉब्स, और वो कानून को भी समझते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं राय साहब के, जो जो हमारी पोलिटिकल जमातें हैं ना, जो डेनमार्क की हैं, वो भी अपने कार्ड्स खेलती है ना, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने होते हैं, उन्होंने भी आगे जाना होता है, उन्होंने भी कुछ बात करनी होती है, अपनी कौम को बताना होता है, देखे जी हम ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी छुट्टियां खत्म होगी इंशाल्लाह अक्टूबर में, तो जैसे भी कोई अगर हमारे ऐसी चीज के खिलाफ आती है बात, तो हम इंशाल्लाह, मैं SF की जमात में जाके उसकी उसकी आवाज बनेंगे, हम आवाज उठाएंगे और इंशाल्लाह उनके साथ बात करेंगे। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि हर चीज जो है अक्टूबर के बाद
1: आस्ता आस्ता बेहतर शुरू होगी। मुजीब साहब, बड़े अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं यार मसाजिद में, कल्चर सेंटर में, आप क्या कहेंगे?
2: जी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अमन का पैगाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, उन्होंने अमन का पैगाम दिया, उन्होंने एक वो वाला सबक हमें अता फरमाया कि जो सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। उन्होंने नमाज की तलकीन की, देखें नमाज की उन्होंने तलकीन की, और अपने नाना का जो है वो इस्लाम है उसको उन्होंने जिंदा किया। आज मुसलमान अगर इस्लाम अगर जिंदा है तो करबला के बाद आपको पता है इस्लाम जिंदा है, और हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। वो जो आपने देखे ना, जिस जे आपने शेर भी सुना होगा, रसूल नाना बाबा अली है अज भी पुछदा है हुसैन की है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इमाम हुसैन की जो कुर्बानियाँ हैं, उस पूरे खानदान की कुर्बानियाँ, अहले बैत की कुर्बानियाँ, वो हमारे लिए एक ये मसले राय है और हमें उस पर अमल करना चाहिए।
1: जीब साहब, आखिर में कोई पैगाम देना चाहें?
2: जी मैं ये कहूँगा जी, हम आपस में प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के साथ भाईचारे, अगर किसी से कोई गलती हो जाए, अगर किसी से कोई तलख कलामी हो जाए, एक दूसरे को दरगुजर करें, माफ फरमाएं। अल्लाह ताला की जात से हमेशा कहती है कि माफ करने वाला जो बड़ा है। तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि हम जितने यहाँ पे लोग रह रहे हैं आपस में प्यार मोहब्बत, देखें सियासत में सियासी विजन होते हैं, सियासी विजन से मुराद आपकी जाती चीजें नहीं होनी चाहिए, जाती तौर पे हम सब एक दूसरे के साथ इखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से रहें, और अगर कुछ सियासत में हमने कोई अपना इख्तलाफ करना है वो सियासी लिहाज से होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपस में राय साहब इतफाक प्यार, अभी देखे बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम और भी हो रहे हैं, या मैंगो फेस्ट हो रहे हैं, अभी कल भी था एक, अभी 11 को भी कोई आया, 19 को भी है, तो देखे लोग इसमें भी मसरूफ हो रहे हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं, मौसम अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि यही भाईचारे का एक तरीका है, आपस में मोहब्बत पैदा करनी है, आपस में इत्तेफाक पैदा करना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारा कदम चूमे।
1: जी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया,
2: बहुत शुक्रिया जी।
1: सामा नाजरीन, ये थे डेनमार्क पीपल्स पार्टी के सदर मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब, जो कि यहाँ डेनमार्क की SF पार्टी के मेंबर हैं।
3: सामेन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।